ओकेना बिल्कुल जी असंग तांसुत पता नुदाबिया चे कम दे रईसना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान मुंग दगा प्रोडक्ट लॉन्च कर मार्केट के मो अवेलेबल कर दग पल अरिसुन को द पारा पल औरिदुन को द पारा पल कस्टमर द पारा हागा जकची जमुंग सुमर औरिदुन की दे आगे जमुंग ना सेटिस्फाइड हु जमुंग ना मुतमाइन हु और आगे मुंग तो बार बार द खबर कोल ची हसाम तासुम मार्केट के प्रोडक्ट लॉन्च की मार्केट के प्रोडक्ट अवेलेबल कई नो मुंगा चिकम दे बेदा दगे रुस्तु सलोर किस्म शैम्पू और सलोर किस्म ऑयल चिकम दे मार्केट के जका अवेलेबल कर मुंग तो पता वा ची मुंग पागे क्या रहा सीजन शामिल कर दी जी पकम के रिजल्ट शता रिजल्ट बके अवेलेबल ले क्वालिटीज पकिस्ता क्वांटिटीज पकिस्ता नुजंगा मुंगा रावल और सासुद पारम पर मार्केट की अवेलेबल कर नुक सासुद विख्तो खुशकी वे सासुद विख्तो कमजोरी वे स्तासु विख्तो उजी स्तासु विख्तो की चमक निश्ता नुटोल किस्म चिकम दी अगर पैसना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान के अवेलेबल दी पैसना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान के इश्ता नुयो जल्लार से इंतहाब के और पलजान पल विख्तो खेस्ता के

उनको नमुंगता नोरी बीमारे हम पैदा की देशी आया कता सो मुख्तलिफ बीमारों के मुब्तलाए लका तबा जुकाम तोरजड़े जड़जड़े दमा द जोड़ो दर्दुना द गुर्दो मसले द मैदे मसले अरकुन्निसा या बांझपन न हम उस तशरीफ रवड़े अलशिफा दवाखाना था और द हकीम मशकूर अहमद से अपना खबल इलाज कवरिश है। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्ट रेपेक पॉइंट टांग सिटी मोबाइल नंबर दे 0319-5523-404।

ये तो कहानी थी आज से 25 साल पहले की, 28, 27, 28, 29, 30 साल पहले की। अब हर मोहल्ले में एक जावेद इकबाल जो है वो पनप रहा है, हर दूसरे घर में एक जावेद इकबाल मौजूद है, क्योंकि वनरेबल क्लास को टारगेट किया जाता है। जो वनरेबल से क्या मुराद, वो मासूम बच्चे, वो मासूम बच्चियां जो कि खुद को महफूज नहीं कर सकते, अपना आप को तहफ्फुज़ फराहम नहीं कर सकते, अब उनको टारगेट किया जा रहा है। शादियां लेट हो गई हैं, शादी नहीं हो पा रही लोगों की, जिंसियात कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो छोटे बच्चे छोटी बच्चियां उनको, किसी को चपेट मारो, किसी को 100-200 रुपए दो। अब छोटी बच्ची को क्या पता चलता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, गलत टच करो उसको, खवातीन के साथ शॉपिंग सेंटर्स में, शॉप्स में, हर जगह ये तबाही जो है ये उरूज पर पहुंच चुकी है और हमारा माशरा इस बर्बादी में बहुत आगे निकल चुका है।

हमारे साथ नजीर साहब हैं लैया से। नजीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। वो कहते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम, आपको हमेशा सलामत रखे अल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं और आपकी मोहब्बतों का, आपके सुनने का, लैया से बैठ के आप हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि हमारे जो प्रोग्राम है उससे आपको बहुत कुछ देखने सीखने को मिल रहा होगा और आप अपना किरदार अदा करेंगे इस माशरे को एक बेहतर माशरा बनाने में।

अच्छा, तो बात को आगे बढ़ाते हुए, जो इतनी लंबी मैंने आपके सामने एक कहानी रखी, एक बात रखी, आप सबके सामने मुख्तलिफ वाकयात पेश किए, ये जब मैं प्रोग्राम का स्टार्ट ले रहा था और प्रोग्राम के बिल्कुल स्टार्ट में, शुरू में ही मैंने बात की कि मेरा जो पिछला प्रोग्राम था वो किस हवाले से था और उस हवाले से मैंने गुफ्तगू को आगे बढ़ाना था, तो उससे मैंने कोशिश किया कि मैं लिंक करूं और लिंक करके आपके सामने मुख्तलिफ वाकयात रखूं, जिससे आपके सामने हमारे माशरे की एक क्लियर पिक्चर आ जाए कि हमारा माशरा इस वक्त कहां पे स्टैंड कर रहा है इस लिहाज से। अब इसमें जो मुलजमान हैं, जो ये जुर्म का इर्तकाब कर रहे हैं, उनके ऊपर तो मैं आता हूं, वो तो उन पर तो मैं बात करूंगा कि जी वो तमाम लोग जो इस तरह के धंधों में मुलव्वस हैं, जो इस तरह के गलत हरकत में मुलव्वस हैं, जिन्होंने खुद को इस तरह के मामलात में जकेड़ के रख लिया है, उनका तो इलाज है वो कानून के पास। लेकिन पहले मैं बात करूंगा उन वालिदैन पे, ये जितने वाकयात मैंने आपके सामने रखे, इसमें से हमें एक सबक मिला कि आज के दौर में आपने एतबार किसी पे नहीं करना। जहां मामू रेप कर रहा है, जहां चचा रेप कर रहा है, जहां भेनोई रेप कर रहा है, जहां साला रेप कर रहा है, कत्ल कर रहा है, तो पीछे कौन सा रिश्ता बच जाता है? यानी सबसे पहले तो आपने अपने घर वालों को यह तलकीद करनी है, उनको बारहा ये बात समझानी है कि जी मेरी गैर मौजूदगी में कोई भी

0: हैं, बस दफा दवाई भी बेजरर होती है, लेकिन मरीज जो है उसने बेशुमार किस्म की दवाइयां इस्तेमाल की होती
1: ये भी होता है,
0: उन दवाइयों के रिएक्शन आना शुरू हो जाते हैं। तो चीज ये है कि अगर आपकी सोच पड़ रही है तो सबसे पहले तो बात यह है कि आप अगर अपने तौर पे उस दवाई को ले रहे हैं, जैसे होता है ना मार्केट में या इश्तेहारात में देखा और जाके गोली मांग ली डब्बी दिखा के और उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले तो आप ये करें कि आप मुआलिज से किसी से मशवरा करें,
1: जाहिर सी बात है,
0: और अपनी उसे जाहरी तौर पे जो आपकी अलामतें हैं जो आपकी बॉडी है उसको दिखाएं और फिर उससे मशवरा लें, तब वो आपको मशवरा देगा कि ये चीज आपके लिए बेहतर है या नहीं है, और अगर इसे आप ज्यादा देर तक इस्तेमाल करते हैं तो इसके नुकसान ये सामने आ सकते हैं।
1: चले ठीक है, तो बिल्कुल जनाब चिकम रूर कॉल करे वो रूरा बेहतर खुदा दा चिक सासु चिकम दा दर्दुन दी दे मतलब चे मुकम्मल इलाज दा पारा सासु तशरीफ रावड़ी अलशिफा दवाखाने था, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी के, इंशाल्लाह हकीम से बसबा अठ बजे नवाल सबाम मकाम सलोर बजे पूरे मौजूद भी और मरीजों चेकअप पॉइंट बजारी साथी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई कौन दे कितू गाल करें दे पैवे जी की में हाल रोशन भाई तो मैसेज में पढ़ गई दाई ठीक है बिल्कुल रेडियो तो सुन दे रहे हकीम साहब पुलिस के बारे में मशवरा गिनने हैं जी, हकीम साहब क्या मशवरा देंगे, हिचकी आती है एक हफ्ते से मुसलसल।
0: देखें हिचकी कोई मर्ज नहीं है
1: ऐसी बात,
0: लेकिन मुख्तलिफ बाज़ दफा अलामत है हिचकी
1: तो अच्छा, ये भी अच्छा, की अलामत है
0: लेकिन ये रुक जाती है बाज़ दफा और बाज़ दफा अचानक आ जाती
1: ऐसी बात है।
0: अब इसमें कई लोग टोटके इस्तेमाल करते हैं कि जैसे हिचकी आ रही है आप अचानक बोलें
1: ऐसी बात है
0: तो बाज़ दफा हिचकी रुक जाती है। कुछ लोग थोड़े से चीनी के दाने डाल लेते हैं मुंह में। चीज ये है कि अब अगर हिचकी जिस आदमी को है तो कोशिश अगर दवाखाने पे आ जाते हैं तो पहली तो बात है कि उससे देखें कि उसके मैदे में कोई मसला कोई तेजाबियत या कोई ऐसी चीज तो नहीं है, तो उसका एक प्रॉपर हल है कि हिचकी उनकी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी।
1: अच्छा गेम साहब बचपन में ये मसला होता रहता था हमें भी, मुझे याद है हिचकी तो हम जब हम पानी पी लेते तो भी ठीक हो जाते थे।
0: बाज़ सूरतों में है, ये टोटके हैं जो सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं, पहले बुजुर्ग कर रहे हैं कि थोड़ा सा पानी पी लें थोड़ी सी चीनी खा लें या
1: ऐसी बात है
0: उससे हिचकी रुक जाती है। और बाज़ उसे इस चीज से कंपेयर करते थे कि यार हिचकी आ रही है शायद तुम्हें कोई याद कर रहा है।
1: हाँ ये भी बड़ी बात है।
0: चीज ये है कि वो एक बस कहने के बॉडी में तब्दीली है उसकी वजह से
1: ऐसी बात है। सो हकीम साहब अच्छा मैदे के जो मसाइल है यानी कि मैदे की जलन है तेजाबियत है इसकी वजह से भी हिचकी आ सकती है।
0: आ सकती है बिल्कुल, मैदे में अगर आपकी खुश्की होगी आपकी तेजाबियत होगी बाज़ दफा उस वजह से भी हिचकी आ जाती है मुसलसल आती है।
1: ठीक है सो बिल्कुल जनाब अगर आपको भी इस तरह का कोई मसला है तो आप बिल्कुल तशरीफ ला सकते हैं अलशिफा दवाखाना में, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। की में हाल जी कौन दे कितू गाल करें दे पैवे
2: ये तो फिर बात की बात है। एक दफा वो हकीम साहब से कह देना कि वो जो एक इंसान के कानों पे जो आवाजें आ रही है किस चीज की अलामत हो सकती है।
1: देखिए जी इंसान के कानों में आवाजें किस तरह की आना ये बताइए जरा।
2: इस तरह की हवा नहीं चलता।
1: अच्छा हवा नहीं चलता ठीक है जी। आप ये बताइए कि कहाँ से बात कर रहे हैं आप।
2: कमरदीन करे से बोल रहा हूँ।
1: चलें ठीक है आप रेडियो सुनते रहे जी हकीम साहब से इसके बारे में मशवरा लेते हैं जी। हकीम साहब कान में मुसलसल हवा की आवाजें आना किस बीमारी की अलामत हो सकती है।
0: देखें बाज़ दफा कान के अपने मसाइल भी होते हैं جیسے ناک کان گلے کے مسائل آتے ہیں،
1: ایسی بات
0: کان کے بعض دفعہ اپنے مسائل ہو سکتے ہیں۔

रानी फ्रॉम चांस क्या हाल है? सब ठीक है भाई। मेरा अबू आज बाजार गया है और मैंने अपने अबू से नो टेंशन मीटर मसीह फेस वॉश मंगवाया है। आई एम मेरे मन मेरा हाथ पूरा खुशहाल है। बिराल बिचनी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई जाना पानश में Wow, there you go. I'm going to send SMS.

लेकिन आप अपने हर दिन की बड़ी कदर कीजिए. ये हजारों का नहीं है, ये सैकड़ों का नहीं है, ये लाखों का नहीं है, ये करोड़ों का एक दिन है जो आपको हर रोज अल्लाह ताला मुहैया करते हैं. और इसका अंदाजा आज की इस मिसाल के बाद आपको बखूबी हो गया होगा कि वाकई यार हर दिन

0: सखी लाल कलंदर मस्त मस्त,
1: सखी लाल कलंदर मस्त मस्त,
0: झूले लाल कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त।
2: जी जनाब, स्किन क्लियर फार्मूले के साथ साथ इस वक्त ट्रेंड चल रहा है जाफरानी फार्मूले का। तो जनाब, हम आप लोग एक ऑलरेडी हमारी जाफरानी क्रीम मौजूद है, 320 रुपए उसकी कीमत है। ठीक है जनाब, अपनी जगह पर उसका एक अपना रोल है और उसके बहुत सारे दीवाने हैं। ठीक है जनाब, और उस क्रीम के अंदर जाफरान की कोंपलें 3 पड़ी होती है, आपने खुद उंगली की मदद से उसको मैश करना होता है और उसके बाद उस क्रीम का इस्तेमाल करना होता है, तो ये जाफरानी क्रीम बन जाती है। लेकिन अभी जो हम आपको प्रीमियम क्लास प्रोवाइड करने जा रहे हैं, वो भी प्राइस में 200-300 वाली हरगिज नहीं होगी। मैंने आपको पहले से बता दिया, ये जो नए फार्मूले केसन के आ रहे हैं, एक जाफरानी प्रीमियम और दूसरा स्किन क्लियर, ये 200-250 वाली क्रीमें बिल्कुल भी नहीं है, 300 वाली भी नहीं है, 400 वाली भी नहीं है, 500 वाली भी नहीं है, इससे ऊपर की है। ठीक है जनाब, लेकिन जो चीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जितने अरसे के लिए वो क्रीम चलेगी, उसके पीछे हमारा एक मैकेनिज्म है कि आपको कितनी मिकदार प्रोवाइड करनी है। ये जो हम नई क्रीमें आप लोगों के लिए लॉन्च कर रहे हैं, ये आम क्रीम से मिकदार ज्यादा होगी, तकरीबन 2 गुना ज्यादा क्रीम होगी, यानी कि जो आपके 7 दिन क्रीम चलती है, जो नए फार्मूले हम आपको देने जा रहे हैं, और ज्यादा मिकदार देने की एक वजह है, वो जब क्रीम हम लॉन्च करेंगे तो आपको एट ए टाइम हम आपको, क्योंकि ये जिन प्रॉब्लम्स के लिए हम ये क्रीमें लेके आ रहे हैं, एक स्किन क्लियर फार्मूला और दूसरा जाफरानी प्रीमियम फार्मूला, ये खास मकसद के लिए है, ये खास किस्म के लोगों के लिए है जिनके मसाइल बहुत पुराने हैं, जो डॉक्टरों के पास जाके 20,000 की दवाएं लेकर आते हैं, हम उनके लिए ये स्पेशल फार्मूले दोनों हमने डिजाइन किए हैं, जो कि बहुत ही सेफ इफेक्टिव है और 7 से 10 दिन की ये हम आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि रिजल्ट के हवाले से। रिजल्ट आपको जो मिलेंगे वो 7 से 10 दिन के अंदर मिलेंगे, क्योंकि जनाब हम आप तक स्टीराइड से बनी हुई क्रीमें नहीं पहुंचाते, केमिकल से बनी हुई क्रीमें नहीं पहुंचाते, नेचुरल एक्सट्रैक्ट से और लीगली एथिकल जो कि फॉर्मुलेशंस होती हैं, वही हम आप तक लेके आते हैं। सो जनाब, केसन नेचुरल पाकिस्तान की 2 क्रीमें ये हैं, उसके अलावा एक हमारी क्रीम आ रही है कोल्ड क्रीम, जो आपको बहुत इकोनॉमिकल हम देंगे। बिल्कुल जनाब, सर्दियों में जरूरत होती है कोल्ड क्रीम की, तो केसन की बहुत ही प्रीमियम क्लास की कोल्ड क्रीम हम लेके आ रहे हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और हो सकता है कि इन्हीं 3 क्रीम्स के साथ हमारी जो चौथी क्रीम है हैंड एंड फुट ग्लूटावाइट। जी जनाब, ग्लूटावाइट में केसन वो पहली कंपनी होगी जनाब जिसके पास इतनी बड़ी रेंज आ चुकी है ग्लूटावाइट की क्रीम, जो इस वक्त आप इस्तेमाल कर रहे हैं, डे एंड नाइट है, आप दिन को भी लगा सकते हैं, रात को भी लगा सकते हैं। केसन का ग्लूटावाइट का फेस वॉश, केसन का ग्लूटावाइट का सोप, और अभी चौथी प्रोडक्ट ग्लूटावाइट के अंदर जो हम लेके आ रहे हैं वो है ग्लूटावाइट हैंड एंड फुट वाइटिंग, हैंड्स एंड फीट। ठीक है ना, पहली हमारी जो क्रीम है ना ब्लैक वाली, वो हैंड एंड फुट है। क्या है? हैंड एंड फुट। लेकिन जो हम ग्लूटा की लॉन्च कर रहे हैं वो हैंड्स एंड फीट है। ठीक है जनाब, समझ आ गई? समझने वालों को समझ आ गई होगी। तो जनाब, ये क्रीमें इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आ रही हैं, लेकिन बात कर रहे हैं ग्लूटावाइट की। मेरी बात सुनिए क्या, कि जिस भी औरत को या जिस हमारी बहन को के चेहरे के ऊपर छाइयां होती हैं, वो एक अलग से मसला है, लेकिन एक और मसला जो स्किन की डार्कनेस का होता है, जिसे हम हरूफ आम में कहते हैं सांवलापन, बंदा सांवला थी गई, लच्छेर सांवली थी गई। ठीक है जनाब, अब सांवलेपन को खत्म करने के लिए बहुत सारे लोग जो है ना ऐसी क्रीमों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिनका वो, यानी कि एक क्रीम है जो दाग धब्बों और छाइयों को खत्म करने के लिए है। ठीक है जनाब, और एक फीमेल है जिसको ना दाग धब्बे हैं ना छाइयां हैं, उसकी सिर्फ रंगत सांवली है, तो उसे क्यों वो क्रीम इस्तेमाल करनी चाहिए छाइयों वाली? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। एक फीमेल है जिसकी स्किन नर्मो नाजिक है, मासूम सी त्वचा है उसकी। ठीक है जनाब, उसको ना ही छाइयां हैं ना ही उसको दाग धब्बे हैं, उसकी सिर्फ रंगत सांवली है, तो उसके लिए तो अलग से क्रीम नहीं होनी चाहिए, या वही छाइयों वाली लगानी चाहिए? अगर छाइयों वाली इस्तेमाल करेगी वो, क्या होगा? स्किन डैमेज नहीं हो जाएगी? क्योंकि छाइयों को हटाने के लिए तो फॉर्मुलेशन को बहुत पावरफुल बनाना पड़ता है। अब जैसे हमारा स्किन क्लियर फार्मूला आ रहा है, वो बहुत ही पावरफुल फार्मूला है, उसके अंदर आम क्रीम के अंदर अगर 4 चीजें होती हैं तो उसके अंदर 9 चीजें डली हुई हैं। व्हाई दिस कोलावेरी? कि जनाब वहां पर जरूरत इतनी चीजों की है, लेकिन जहां पर सांवलापन होता है ना, वहां पर इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आ रही है? अगर हमारी कोई बहन अगर ऐसी क्रीम का इस्तेमाल करेगी जिसको छाइयां नहीं है, दाग धब्बे नहीं है, और वो इस्तेमाल कर ले तो उसकी स्किन तो डैमेज होगी, क्योंकि वो तो स्ट्रांग फार्मूला इस्तेमाल कर बैठी है। तो जो सामने होंगे, हम तो कहते हैं कि भाई हम तो कहते हैं अगर आप हमारी बात मानते हैं, हम किसी और की ना बात करते हैं ना किसी और के हवाले से कहते हैं, हम सिर्फ अपनी बात करेंगे कि भाई हमारे प्रोफेशनल ये समझते हैं कि जो सांवला बंदा है भाई उसको ऐसी क्रीमों की जरूरत ही नहीं है, छाइयों हटाने में उसको छाइयां नहीं है, उसको दाग धब्बे नहीं है, तो वो क्यों बेचारी इस्तेमाल करे, अपने स्किन को क्यों डैमेज करे? उसके लिए तो वो थोड़ा सा माइल्ड फार्मूला इस्तेमाल करे, वो थोड़ा सा सॉफ्ट, थोड़ा सा हल्का फार्मूला इस्तेमाल करे, क्योंकि उस बहन को तो छाइयों का मसला है नहीं, उसको तो दाग धब्बों का मसला है नहीं, उसकी तो सिर्फ रंगत सांवली है, तो क्यों वो अपने चेहरे के ऊपर इतने सख्त फार्मूले को इस्तेमाल करें? नहीं करें। इसलिए हम कहते हैं कि भाई जो सांवला हैपन है उसको आप खत्म कर सकते हैं, हमारे बहुत ही माइल्ड फार्मुलेशन है, केसन ग्लूटावाइड

जी जनाब, केसन की ग्लूटा व्हाइट हम कहते हैं सांवलेपन का तोड़ है केसन की ग्लूटा व्हाइट क्रीम, जो कि डे एंड नाइट है। आप रात और दिन दोनों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फ्यूचर में इसके लिए हम थोड़ा सा प्लान किया हुआ है और वो नाइट क्रीम में ये कन्वर्ट हो जाएगी ये वाली क्रीम, क्योंकि डे टाइम क्रीम हम आप लोगों के लिए एक और लेकर आ रहे हैं जो सिर्फ डे टाइम होगी। और सॉरी, चौथी क्रीम का मैं नाम बताना आपको भूल गया। नंबर वन, केसन की स्किन क्लियर फार्मूला, केसन की प्रीमियम क्वालिटी जफरानी फार्मूला, केसन की जो है क्या कहते हैं इसको कोल्ड क्रीम, एंड फोर्थ वन इज फेस लवली। लवली फेस के नाम से हमारी डे टाइम क्रीम आ रही है और ये दोनों क्रीमें हमारी आप लोगों के लिए हम बहुत ही सस्ती बना रहे हैं। दो क्रीमें महंगी हैं, दो सस्ती हैं। जहां पर जरूरत है महंगी बनाने की वहां पर महंगी क्रीम होगी, जहां पर जरूरत नहीं है महंगी क्रीम बनाने की आपका, जैसे कि कोल्ड क्रीम है उसके लिए कोई खास उसके अंदर कुछ इस्तेमाल नहीं होता है सिवाय बटर्स के, सिवाय ऑयल्स के, उसके अंदर कोई महंगी चीजें इस्तेमाल नहीं होती। तो कोल्ड क्रीम आपको बहुत ही सस्ती में मिलेगी हमारे वाले, इंशाल्लाह सबसे सस्ती रखेंगे मार्केट में। जितने भी कोल्ड क्रीमें हैं सबसे सस्ती हमारी कोल्ड क्रीम होगी। इसी तरीके से जो फेयरनेस की क्रीमें हैं, जो डे टाइम क्रीमें हैं, उसके अंदर भी हम आप लोगों को ढेर सारी बचत देने वाले हैं। और ये क्रीम जो कि लवली फेस के नाम से आ रही है हमारी, ठीक है जनाब, ये भी बहुत आपको सस्ती मिलेगी। तो ये दोनों क्रीमें तो हर बंदे ने घर में रखनी है, बाकी जिनके मसले मसाइल होंगे तो वो इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन बात कर रहे हैं ग्लूटा व्हाइट की। अभी जो ग्लूटा व्हाइट आप लोगों के पास मौजूद है वो डे एंड नाइट क्रीम है, ठीक है जनाब, और बहुत जल्दी से आपके सांवलेपन को खत्म कर देती है क्योंकि इसके अंदर ग्लूटाथियोन मौजूद है। मैंने बहुत दफा आपको बताया, एक दफा फिर से आपको बताता चलू कि जनाब ये जो ग्लूटाथियोन होता है, ग्लूटाथियोन बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे होते हैं टिकटॉक के ऊपर, वो ये लफ्ज बोल ही नहीं सकते, वो कुछ और बोल रहे होते हैं, ग्लूटाथियोन नहीं बोल सकते कि ये क्या चीज है। ग्लूटाथियोन बेसिकली आपके बॉडी के अंदर ही पैदा होता है। आपका जिगर जो है जिस तरह खून बनाता है उसी तरीके से आपके बॉडी के अंदर आपका जिगर ग्लूटाथियोन भी बनाता है। जिस तरह खून का काम होता है आपको ताकत देना, जैसे ताकत प्लस, हाँ जनाब, जैसे खून का काम है आपको ताकत देना, उसी तरीके से ताकत प्लस का काम है आपको ताकत देना। और खून की तरह जिस तरह आप एनर्जेटिक हो जाते हैं खून की बोतल लगवाने के बाद, उसी तरीके से एक जार जब आप हमारा ताकत प्लस का इस्तेमाल कर चुके होंगे तो जिसम आपका बन चुका होगा, डोले शोले आपके बन चुके होंगे, खून की रवानी साफ सुथरा खून, और वो खून की सुर्खी जो है आपके गालों के ऊपर नजर भी आ रही होगी, क्योंकि कहते हैं कि 70% जो आपकी खूबसूरती है ना वो अंदर से निकलती है। आपका खून साफ हो गया, आपका खून बढ़ गया, ठीक है जनाब, ये खूबसूरती आपके चेहरे के ऊपर आती है। तो ताकत प्लस बेसिकली आपको ताकत प्रोवाइड करेगा। लेकिन बात कर रहे थे ग्लूटाथियोन की, इसी तरीके से जब खून की कमी होती है तो क्या होता है, आप खून की बोतलें लगाते हैं ताकत प्लस को पीते हैं ताकि ताकत फिर से आ जाए। इसी तरीके से ग्लूटाथियोन जो होता है, जिस भी बंदे या बंदी के अंदर ये कम हो जाता है तो वो बंदा सांवला होना शुरू हो जाता है, या उसका जिगर जो है ग्लूटाथियोन जब कम बनाता है तो बंदा काला हो जाता है, सांवला हो जाता है। अब उसको कमी को कैसे पूरे कर सकते हैं? ग्लूटाथियोन के इस वक्त इंजेक्शन भी मौजूद है, टैबलेट भी मौजूद है, इसकी ड्रिपें भी मौजूद है, इसकी गोलियां भी मौजूद होती है। बहुत सारे लोग खाते हैं और इसी मसले के लिए खाते हैं कि उनका ग्लूटाथियोन उनके जिस्म के अंदर बढ़ जाए और वो मुकम्मल तौर पर गोरे हो जाए। हमारे इनमें से कोई चीज नहीं है, हमारे पास ग्लूटाथियोन की क्रीम है, ग्लूटाथियोन के जो है फेस वॉश है, ग्लूटाथियोन का साबुन है, तीन चीजें आप लोगों के पास मौजूद है जो यकीनी तौर पर आपके सांवलेपन को हटा देती हैं। जी जनाब, बिल्कुल सही सुना आपने, आपके सांवलेपन को यानी कि काली रंगत अगर तुम्हारी है तो सांवले सांवले लगते हुए, तुम वैसे सांवले लोग ही मिठे लोग होने, प्यारे लोग होने, ठीक है जनाब, एक गाल नहीं कि जरा सांवला बंदा होता है वो कोड़ा होता है, बिल्कुल जी कोड़ा नहीं होता, सांवलेपन जी अपनी जरे एक कशिश होती है। लेकिन लोग आदन की चिट्टा बंदा होवे तो ज्यादा मिठा होता है, तो जनाब आपको भी मिठा बनना है तो फिर मिठा बनने के लिए आपको चिट्टा बनना पड़ेगा, और चिट्टा बनने के लिए आपको केसन की ग्लूटा व्हाइट रेंज में से किसी चीज का इंतखाब करना पड़ेगा। या तो हर रोज आप हमारे ग्लूटा व्हाइट फेस वॉश से चेहरा धोएं, या फिर ग्लूटा व्हाइट साबुन से चेहरा धोएं, और साथ में जनाब रात और दिन दोनों वक्त में लगाएं केसन की ग्लूटा व्हाइट क्रीम।

0: जी जनाब 0344-936-3366 आप हमें कॉल कर सकते हैं इस वक्त 03-44-03-44-936-3366 03-44-936-3366 कैसे नेशनल पाकिस्तान की प्रोडक्ट आपके शहर टांक में अगर मौजूद हैं तो टांक में हर जगह आपको हमारी प्रोडक्ट्स मिलेंगी, जैसे कि हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं सदाम प्लाजा टांक के स्टार्ट के अंदर, जैसे टांक स्टार्ट होता है और उसी के साथ ट्रैफिक पुलिस चौकी है तो वहां पर है रमजान मार्केट या सदाम प्लाजा, वहां पर जाएंगे तो शॉप नंबर 3-4 है सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे, ठीक है जनाब, वहां पर आपको केसन के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे और आप वहां पर हमारी ताकत प्लस ले सकते हैं वेट कम पेट कम, इसके अलावा हाजमा कंट्रोल सिरप या फिर अदर प्रोडक्ट जैसे कि ब्यूटी के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा हूं केसन की ग्लूटा वाइट रेंज का, जिसके अंदर आपको डे एंड नाइट क्रीम भी मिलेगी, आपको साबुन भी मिलेगा और फेस वॉश भी मिलेगा। कीमतें क्या है इस वक्त, जितनी भी कंपनियों ने ग्लूटा वाइट को लॉन्च किया हुआ है, जिन जिन कंपनियों ने ग्लूटा वाइट क्रीम या साबुन या फेस वॉश बनाए हुए हैं, सबसे सस्ते और सबसे इकोनॉमिकल जो है वो केसन के प्रोडक्ट हैं ग्लूटा वाइट के अंदर, यानी ग्लूटा वाइट की जो क्रीम है वो आपको 350 रुपए में मिलेगी, जो केसन का ग्लूटा वाइट का सोप है वो आपको 250 रुपए में मिलेगा, इसके अलावा जो है केसन का जो ग्लूटा वाइट फेस वॉश है
1: सेहतमंद
0: जिंदगी, केसन का जो ग्लूटा वाइट फेस वॉश है वो आपको सिर्फ 450 रुपए में मिलेगा।

0: रोजाना 4 से 5 براہ راست स्टे विद अस।
1: जी जनाब, आप लोगों की कॉल्स को लेंगे इस वक्त, और इस वक्त जी हमारे साथ फर्स्ट कॉलर आ चुके हैं, और अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो मुलाजिम दुकानदार हमारे साथ रनवाल से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम खलील भाई, कैसे हो जी? खैर
1: है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुलाजिम भाई, तुसा सुनाओ, ठीक ठाक है? तुसा खैर खरीयत नाल? अच्छा जी, माशाल्लाह, केरी केरी शाकिन है? बात के संदी
2: बस ओ दर्द शफा गिने दऊ सर।
1: अच्छा जी, माशाल्लाह।
2: बाकी ये गिने साबण गिने।
1: अच्छा, साबण गिने वे। कल जेरे साबण दसियान उपटन ते कोजिक ते राइस आला, ओ भी गिने वे या ना?
2: बिल्कुल ऐसा गिने साबण, एक गिने नमूने गिने, एक एक करा पे ओ ना तो साखो नहीं ना देना।
1: अच्छा, ना नहीं आने फिलहाल तो को, बाद लोगों को की मैंने सोच लेता को आपे ना नहीं आने था
2: ओ देरे लोग गिनाले ओनन वो सब को आपे रसे में जो फ्रांस शहर हो या डेंगे शहर हो ना कुछ खेलने है ना।
1: अच्छा, उन लोगों की समझ आ वैसे जले तो को आपे एक्शन के
2: भैया नारी तो अगर जो कोई जनान आने तो जनान घर एक दिन तक भाई शहर सा खुद उन पता लग जाना थे तो ऐसा को तो नहीं पता लगता कोई जना आने तो आप जाइए भाई फ्रांस साहब ने एक मैं आ गए यहाँ पर खड़े नहीं तो देखो तो देर से तो लोड़े ही हो शहर देने
1: जी रितो को पसंद हो गया ऐसा तो वो चाह के दे सू ऐसे
2: बिल्कुल। बाकी वो ताकत प्लस हो मेरा ख्याल है खत्म पैन हो मैं आने नाम खोले के खत्म पैन
1: यकीन करो ताकत प्लस दस जितना स्टॉक भेजे ने ना कोई समझ नहीं आती। अज उन्होंने वाला कुछ एक रिपीट ऑर्डर दिता है ते इंशाल्लाह कल उन्होंने तो भेजे सुन दूध वाला पहले ऐसा सामान भेजा से बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। सारा
2: तो मैं कुछ सेंडअप आई जो भाई कितने कितने दर्जन ही चीज दुकानदार गिन गया वा तो खाम खा सामान हो कह दे भाई तू सवा तू ना तो गंती करे दे जो भाई सामान कौन है उन्होंने कॉल से भाई जरा ना वापस के करू भाई जरा सामान भी मुंह पे ले
1: आ सामान मैं इना कोई गाल की थी कि हुन तुसा इना को छोड़ो हुन 5-5 छी छी कार्टन मंगवाओ क्योंकि लोगों को रिजल्ट मिल गए लोग बार बार मंगदे हुन दुकानदार तुम्हारे को दर्जन दर्जन चावन लग गए तो तुसा उथे अपने 8 दर्जन 10 दर्जन ते खड़े वे कम से कम तुसा हुन कार्टन ते पहुंचो ना 5-6 कार्टन इकट्ठे मंगाओ ताकि तो हूं लूट वाला पहले स्टॉक ही आज खत्म थी उन्होंने को
2: यो मैं पहले बोतल भी गिने।
1: अच्छा जी, मैं दे हाजमा कंट्रोल सिरप भी गिने वे
2: ये दिया वो गिने थे बाकी सामान अब इंशाल्लाह सारे को बस पूरा जेरा कुछ है कैसी दवा तो तेने भी शाह होती है दवा तो सबको पता नहीं होता तो कहने तो बात तो गिना रहने
1: बस नवी शाह तो इंशाल्लाह जिम्मे सारे करीमा 4 किस्म दे आंदे पेन ना ठीक है ओ जी आसर तो इंशाल्लाह वो हाजी जरबत खान तो पहुंच वैसे तो तुहाडे भी पहुंच वैसे लेकिन फिलहाल जेरे शिया तुहाडे कोल मौजूद हैं तो बस लोग आसन ते अपनी
2: ठीक से बस तो थोड़ा ना किंदे बस मैं तो उसकी कॉल करे थे तो एक के दोस्त सलाम कहने पे थे नुमान शेख को खास सलाम कहने पे
1: बस नुमान शेख को दर सलाम अखीच गया। ठीक ठीक है सही, बहुत मेहरबानी शुक्रिया जी। मुलाजिम रनवाल वाले जितने लोग हैं यार खुशकिस्मत हो कसम से आप, मैं सही बता रहा हूँ आपको कि आप जो है आपके इलाके के अंदर एक दुकानदार भाई ये मुलाजिम की सूरत में मौजूद है जो एक कंपनी को पहचान गया है, उसे समझ आ गई है कि यार ये मेरे इलाके के लोगों के लिए ना ये करामत चीजें हैं, ये मेरे इलाके के लोगों को चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मैं मुलाजिम भाई का बहुत शुक्रिया और कि वो लोगों के कहने के ऊपर फौरन से फौरन जो है फौरन पहुंच जाते हैं हम जरबत खान के पास और प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अगर हम कॉल कर चुकी है तो भाई रनवाल के जो लोग हैं या उनके आसपास जितने भी लोग हैं रनवाल दे नाल नाल ठीक है सही था ओ इन्होंने को पहुंचे सोहेल मदरसे दे बिल्कुल नाल है इन्होंने घर दे विच भी केसन दे सारे प्रोडक्ट मिलते हैं केसन दा आयल केसन दा शैम्पू केसन दे क्रीमा के

0: जो कंपनियां अपने तरीके से, क्योंकि सेम नेचुरल चीजें आप तक नहीं पहुंच सकती, वो खराब हो जाती हैं, ठीक है जनाब, उनके एक्सट्रैक्ट लिए जाते हैं, ठीक है जनाब। ड्रैक आप, मैं आपको मिसाल, मैंने आपको एलोवेरा की दी है ना, एलोवेरा को निकाल कर आप एक हफ्ते से ज्यादा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, 3 दिन के बाद उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, बैक्टीरिया की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कोई भी प्रिजर्वेटिव डाले नहीं होगा जब तक नेचुरल चीजें जो होती हैं वो इस्तेमाल में आप एक हफ्ते से ज्यादा कर ही नहीं सकते हैं। तो हम जो आपको प्रोवाइड करते हैं वो एक्सट्रैक्ट होते हैं, और एक्सट्रैक्ट्स के रिजल्ट जो होते हैं वो एज कंपेयर जो फिजिकल नेचुरल चीजें होती हैं उससे थोड़े से तेज होते हैं, ठीक है जनाब। कॉलर हमारे साथ मौजूद है और मौका दे रहे हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। के कुल शबीर उस्ताद सारी आवाज तो को ऑन एयर नहीं वे करने देने सबको अपने शहर लोगों को तरसेंदे पैवे। मैं किसी सारी आवाज को अपने पहाड़पुर नहीं वे बजाने देना, तुस आवाम को तरसाई पैवे।
1: अपना जोड़ो जो लोग बड़े तकलीफी थी, बड़े परेशानी, काफी आवाज सुनने को रही, तो चलो बाकी प्रोग्राम सोचे लोग खामोश नहीं थे, मिसला नहीं हो अपना मतलब बात नहीं ऐसा करके बैठे
0: मुश्किल ही होसन जिन्हों को आवाज नहीं आती पी। असि सारी भी गुजारिश है 97.4 दी मैनेजमेंट को कि हुन बहुत ही गेल आले बस करो। पहाड़पुर चलो ठीक है। आवाज थोड़ी बहुत ज्यादा ब्रेक थी नहीं पई है, ते थोड़ा जे टॉपिक ते गाल की थी वैसे के पैसे जमा जल्दी तुहाडे कोल थी वेंदन के लग ज्यादा जल्दी वेंदन। चलो ठीक है जी, बहुत मेहरबानी से शुक्रिया। सारे नाल मौजूद मुश्किल से सुन दे पे लेकिन बात भी सबको सुन दे पे, तुम्हारी मोहब्बत है सही, बहुत मेहरबानी। सब सुनने वालों को शबीर उस्ताद। अच्छा जी, केज के अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म की सेल है हमारी। और कल मुझसे ये जिस तरह मुलाजिम कह रहे थे ना कि ताकत प्लस नहीं था उसके पास खत्म, तो ये आए हुए थे हमारे पास। और शबरा उस्ताद भी सुन रहे होंगे, जब से केज के अंदर हमारी कंपनी गई है, केज का इलाका जो है ये अभी हमें सबसे ज्यादा ऑर्डर जो है फ्रीक्वेंट आ रहे हैं शानी मोबाइल जोन, और वो अब इतने बड़े बड़े ऑर्डर लेकर आता है हमारे पास कि हमारे पास कभी चीजें बराबर भी नहीं होती। कल वो भी नाराज होकर चला गया क्योंकि वेट कम नहीं थी, ताकत प्लस नहीं थी, तो वो नाराज होकर गया कि यार इतने ज्यादा लोग केज के मांग रहे हैं और आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमें कहा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक दो दिन के अंदर ये बैच कम्प्लीट हो जाएगा फिर आपको दे देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम जनाब मोहतरम।
2: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। जी वालेकुम सलाम, मैं कि कौन इंसान है नाल सही नाल से सो अपना
2: खरीद भाई की हाल है
0: जी? ठीक ठाक नाल से सो मैं कि अपना। हेलो जी, ओके जरा फिर से कॉल कीजिए कि एक दफा, और आपके SMS भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें कॉल कर रहे हैं 03449336366 के ऊपर, एंड हमारे साथ कौन है? हाय एंड हाउ आर यू ब्रदर, आई एम हमजा बलोच फ्रॉम खुराई, शो इज वेरी नाइस, ऑल लिसनर्स को सलाम कह रहे हैं। ठीक है जी, सलाम पहुंच गया। उसके बाद देखते हैं कौन है। आमिर अवान पाकिस्तानी जो है वो भी केसन नेचुरल पाकिस्तान का केसन टी टाइम।

0: चाय के साथ
1: लवली से चेहरे पे निखार ला।
0: जी जनाब, चाय के साथ नोश फरमा रहे हैं। कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम जनाब।
2: वालेकुम सलाम।
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं के आवाज थोड़ी बहुत ज्यादा कट दी पई है, थोड़ी झा चेंज नहीं मैं करने चा।
2: आवाज ठीक आ रही, ठीक आ रही, आवाज कटी नहीं पई थी। मैं बात कर ले ना प्या तेरा शबाब को।
0: जी भाई जन की में हाल ठीक है।
2: आवाज सारी जनाब साहब जनाब।
0: जी क्या देते हैं वे
2: साहब जनाब? साहब शबाज
0: शबाज ठीक है
2: शबाज।
0: अच्छा जी, उतवा लेंदे पे वे?
2: हां शबाब को लेने पे शबाब। अच्छा,
0: प्रोग्राम सुन दे रहंदे वे सारा रोजाना?
2: हां रोजाना सुनदा, प्रोग्राम सुनदा रहा।
0: वत किसे कीती है तुसा? किने कीती हाल तक?
2: मैं मुलाज करे को ना जी रहा दवा कंट्रोल नहीं होगा, हाजमा कंट्रोल,
0: हाजमा कंट्रोल सिर्फ ठीक है।
2: दवा कंट्रोल नहीं होगा, हाजमा कंट्रोल
0: पीता ही कुछ समझ आई है उन्दी सिरप दी सारा।
2: पीला
0: मजा आना
2: पीता
0: मैं कि फर्क महसूस थी है कुछ जलन वगैरह गैस वगैरह प्रोग्राम तो मजेदार है। सिरप शीशी मजे दी है कि नहीं ये दसो? अच्छा चलो ठीक है, दो चार दे बार मजीद पियो तो बस सब दसना है तुसा मजीद भी ठीक थे क्या? हाँ जनाब, भाई जान कह रहे थे भाई साहब के भाई मैंने हाजमा कंट्रोल सिरप लिया है। हाजमा कंट्रोल सिरप केसर नाचल पाकिस्तान का है जो कि हाजमे को दुरुस्त करता है। आप यकीन कीजिए कि अगर आपको मैदे का जितना भी बड़ा मसला है, चाहे आपको डिकारे आती हैं, चाहे खाना खाने के बाद आपको तेजाबियत होती है, खाना खाने के बाद आपको गैस होती है, या आपके सीने के अंदर जलन होती है, ये गैस बदहजमी और जलन का दुश्मन है। बर्फ है, बर्फ जलती हुई आग के ऊपर जब आप इसका दो चम्मच डालेंगे ना, तो अगले तीन मिनट के अंदर जितनी भी तेजाबियत होगी, जितना भी आपका सीना जल रहा होगा, आप यकीन कीजिए आपके बड़े से बड़े मसले जो मैदे के हैं आप इसी हमारी प्रोडक्ट के जरिए खत्म कर सकते हैं। ये मैदे का सिरप भी है, ये भूख लगाने वाला सिरप भी है, यानी कि अगर आपको भूख ना लगती हो तो खाने से तकरीबन एक घंटा पहले आप इसको जब लेंगे, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको भूख नहीं लगती है, जिसकी वजह से उनकी जान नहीं बनती है, तो आप केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप सेरिसीड के नाम से जो आता है इसे लीजिए, और अगर भूख नहीं लगती तो खाने से एक घंटा पहले इसको इस्तेमाल करें, और अगर आपको खाना खाने के बाद तकलीफ होती है, आपके मैदे के अंदर जलन होती है, सीने के अंदर जलन होती है, डिकारे आती है, गैस हो जाती है, या फिर आपको कब्ज का मामला है, तो खाना खाने के बाद आप इसकी दो चम्मच इस्तेमाल करेंगे, और जो मैदे के पुराने मरीज हैं वो कम से कम इसको कितनी बार इस्तेमाल करेंगे, कम से कम दिन में दो दो चम्मच आपने दो दफा इसके इस्तेमाल करने हैं।
1: यकीन है भरोसा।
0: जी जनाब, आप भी हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और हमारा नंबर आप लोगों के पास मौजूद है जो कि टेलीनॉर का नंबर है 0344-936-3366। बहुत दफा बहुत आसानी तरीके से मैं बता चुका हूँ, लेकिन यकीन कर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी तक हमारा नंबर सेव नहीं कर पाए होंगे, तो नोट कर लीजिएगा 0344-936-3366। जनाब ये हमारा नंबर है जिसके ऊपर आप लोग हमें कॉल करते हैं, एसएमएस करते हैं और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। केसन के प्रोडक्ट डेरस मिल खान में जैसे मुख्तलिफ मकामात है, जैसे कि हाजी जरी जनरल स्टोर जफराबाद, इसके साथ साथ अल फैसल मार्केट में जो है फारूक जनरल स्टोर भी है और अब्दुलरहमान जनरल स्टोर भी है, वहां पर भी हासिल कर सकते हैं। दराबन चुंगी जो है जनाब, वहां पर मौलाना अलाउद्दीन साहब के मदरसे के बिल्कुल सामने है जनाब खान कॉस्मेटिक्स, ठीक है जनाब, आप वहाँ पर भी हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। बनू चुंगी पर कराची कॉस्मेटिक के नाम से शकील भाई की दुकान है, सुभान कॉस्मेटिक है, आरिफ जनरल स्टोर है, तकरीबन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और बिल्कुल न्यू बनू चुंगी के ऊपर है बलोच करियाना, ठीक है जनाब, बहुत सारे लोग इस इलाके के बहुत सारे लोग बलोच करियाना से ही जो है राशन वगैरह खरीदते होंगे क्योंकि बहुत बड़ा सेटअप है, तो वहां पर भी आपको हमारे सारे प्रोडक्ट मिलते हैं बलोच करियाना। ठीक है, आप शकील का मैंने आपको बता दिया यानी कि कराची कॉस्मेटिक वाले, और इससे आगे का जो इलाका है श्री यूसुफ चौक, वहां पर जाहिद शॉपिंग सेंटर और उमर गिफ्ट सेंटर बिल्कुल मेन अड्डे के ऊपर ही है, जनाब इनसे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मजार वाली गली जो है, दरबार वाली गली है, वहां पर है जनाब
3: स्टेशन
0: उमर जनरल स्टोर, इब्राहिम भाई होते हैं वहां पर भी आपको सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। सीआरबीसी पर वसीम जनरल स्टोर है जनाब, वहां पर भी आप हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बाजार की तरफ अगर आप आए, अगर बार बार हम मौजूद हैं, तो स्टेट लाइफ बिल्डिंग के सामने है जनाब गुलशन कैश एंड कैरी, आप वहां पर भी हासिल कर सकते हैं प्रोडक्ट। A1 कॉस्मेटिक पर भी आपको हमारे प्रोडक्ट मिलेंगे, और इसके साथ साथ जी जनाब इसके साथ साथ बाजारों के अंदर तकरीबन हर जगह आपको केसन के प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे चुगल्ला के साथ, चुगल्ला के साथ अहमद जनरल स्टोर है, अलमदीना वैरायटी है, ठीक है जनाब। इसके अलावा राजा जनरल स्टोर है, हाजी गुल जनरल स्टोर है, ठीक है जनाब। और इसके अलावा अमान जनरल स्टोर, फारूक जनरल स्टोर, वकास अमान, चाइना कॉस्मेटिक, असद गिफ्ट सेंटर, और इसके साथ साथ जो है अथर गिफ्ट सेंटर है कमर्शियल मार्केट के अंदर, कमर्शियल मार्केट के अंदर ही फैमिली शॉपिंग सेंटर है, और हमारी अपनी शॉप डायरेक्ट भी आप हमारे पास आ सकते हैं। और जब आप हमारे पास डायरेक्ट आते हैं यानी अकबर प्लाजा में, अकबर प्लाजा है मियां कमर्शियल मार्केट के बिल्कुल बैक साइड में, मार्केट के अंदर आप आएंगे तो वहां पर आपको मिलेगी केसन शॉप, और वहां से आप ढेर सारी खरीदारी कर सकते हैं ढेर सारी बचत के साथ साथ, ठीक है जनाब। और इसके अलावा गोमल मार्केट में जाएंगे तो अलकरीन, अल फरीद कॉस्मेटिक, शीश महल एंड मक्का कॉस्मेटिक, केसन आज पाकिस्तान की 100 बेस जनाब हाफ के जी के अंदर मौजूद है। हमारे आने से पहले सिर्फ केसन की 100 बेस मार्केट में मौजूद थी, किसी और कंपनी की नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह केसन जो भी ट्रेंड लेकर आती है बहुत सारे लोग उसे फॉलो करते हैं, तो अभी तक किसी और कंपनी की 100 बेस डेरा में नहीं मिल रही थी सिवाय केसन कंपनी के। तो हमें हमारी देखा देखी कुछ लोग जो है 100 बेस लाहौर से लेकर आए होंगे, या उन्होंने फिर एड भी चलाया कि हमने हमारी सस्ती भी है। 100 बेस की बेसिकली क्वालिटियां होती हैं, आपको नहीं पता लेकिन मैं आपको अंदर की बात बताऊं कि 100 बेस जो है ना, ये बेसिकली ऑयल की मदद से एक केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है ना, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ऑयल को पानी के साथ मिलाया जाता है और 100 बेस बनती है। अब ये ऑयल कौन सा हो, कोई भी ऑयल होगा उससे 100 बेस बन जाती है। तो जो सस्ती 100 बेस बनती है वो चर्बी के तेल से हासिल करता होती है, या फिर वो जो होती है आम बनस्पति घी से बनी हुई होती है। केसर नेचुरल पाकिस्तान की जो 100 बेस है वो खालिस कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल से बनी हुई है। फर्क याद रखिएगा जहन के अंदर, कहीं पर अगर आपको लगे कि 100-200 रुपए और सस्ती है और केसन की 100-200 रुपए महंगी है, तो फर्क ये है कि हम दो नंबर क्वालिटी की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करते। आम वनस्पति घी 450 रुपए का किलो है, 490 का है, 500 का है, जबकि कोकोनट ऑयल 1700 रुपए का किलो है। तो कितना डिफरेंस है, एक किलो के अंदर तकरीबन जो है वो 1200 का डिफरेंस है, ठीक है जनाब, 1200 रुपए का एक किलो के अंदर डिफरेंस है। तो हमारी जो 100 बेस है केसन 100 बेस, वो प्योर कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल से बनी हुई है, और लो क्वालिटी के ऑयल से बिल्कुल बनी हुई नहीं है। तो खालिस चीज अगर आपने यूज करनी है, क्योंकि आपने साबुन बना के खुद इस्तेमाल करना है या फिर आपने बेचना है, तो जाहरी बात है कि आपको अपने चेहरे के लिए, अपने फेस के लिए जबरदस्त चीज का इंतखाब करना चाहिए। इब्राहिम बैटरी एंड सोलर सिस्टम, डबरा बाजार, केसन सामान मिलता है। सर जी आपके पास सामान हमारा कम मिलता है, वजह क्या है, आप क्यों दो दो पीस मंगवाते हैं? लोग मुझे गिला करते हैं कि भाई आप इब्राहिम सोलर बैटरी का नाम लेते हो लेकिन वहां पर उसके पास चीजें नहीं होती हैं, ताकत प्लस नहीं मिलता, शिफाय दर्द नहीं मिलता, वेट कम नहीं मिलता। तो इब्राहिम भाई आप भी वहां पर मौजूद हैं, मुझे एक और एड्रेस भी दिया गया है, शेख अतार में जिया जनरल स्टोर है, वहां पर भी आपको अगर इब्राहिम भाई के पास ना मिले तो आप वहां पर जाइएगा और हासिल कीजिएगा। ये तो हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, जिंदगी रही शाम 4 बजे। कल तक के लिए इजाजत देंगे अल्लाह ने के बाद।

मतलब मेरे मुझसे बड़े थे, मेरे मोहसिन थे, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा था। और कई बरसों के बाद उसको मुझे घंटी करनी पड़ी कि मेरे बेटे को समझा दें इसका हाथ मेरे गरीबान तक पहुंचा है। तो मैंने बड़े सलीके से, करीने से, जो हमें तजर्बा है किताबों से सीखा, बड़ों से सीखा, जूतियां सीधी करके सीखा, तो उनको सिखाया। बाप बेटे की मुलाकात हो गई, उनकी सुलह हो गई और मुझे दुआएं दी। एक दीनदार था, उसका भी ये मसला था, तो उसको मैंने पहले बताया कि तू पहले मुझे बताओ। जब उसने मुझे सारी बातें बताई तो उसमें मैंने कहा कि तू गलत है, लेकिन बेटे के सामने मैं तुझे ये नहीं कहूंगा कि तू गलत है, तू खुद को बेहतर बना, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन आप आगे जाके ये करें कि मैं बेटे को तुम्हारे सामने गलत तो साबित कर दूंगा, लेकिन गलती पर आप हैं। तो कभी कभार बाप भी गलती पर होते हैं, कभी कभार उस्ताद भी गलती पर होता है। हर वक्त नशा गिर्द गलत होता है ना, हर वक्त कभी बेटा गलत होता है। ठीक है जी, तो कोशिश ये करें कि हमसे भी गलतियां होती रहती हैं, तो आप उसको अनाक का मसला ना बनाएं।

वकील साहब ने एक और मैसेज किया है कि इकराम साहब ने मुझ पर बहुत मेहनत की है, अल्लाह सर को आबाद करे, आमीन। खुश रहे, आबाद रहे। डियर, हमने हमेशा कोशिश की है कि हर शागिर्द कामयाबी तक पहुंचे, और आज एक अच्छे वकील बनने के बाद आप मुझे मैसेज कर रहे हैं और आप मुझे सुन रहे हैं, और आज भी आपको जरूरत है और मुझे भी आजकल मुझे असाजा की जरूरत है। आज भी मैं सीख रहा हूँ, आई एम स्टिल लर्नर, आई एम स्टिल स्टूडेंट, आई एम लर्निंग नाउ, क्योंकि मैं शागिर्द हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ ना। और वो कहते हैं ना कि ये जो तालीम का सिलसिला है, जो प्रोसेस है, टीचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक, ये सीखने का अमल है, सिखाने का अमल है। मेरे ख्याल में कभी ये कोई ना कहे कि मुझे सब कुछ आता है और मैं सब कुछ जानता हूँ, ये गलती करेगा, ये बेवकूफ़ी हो, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में हम क्या क्या सीखेंगे जी।

0: मेरा एक मसला था, अब बात चल गई है तो मैंने, मेरे शागिर्द तो हैं वकील, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्मी भी अफीसर हैं, बहरहाल वो अलग लंबी कहानी है एक। तो इस वकील से मैंने कहा कि डियर मुझे कोई काम करना है, तो उसने कहा सर आप मुझे सिर्फ कागज भेज दें, बिल्कुल आप कचहरी में आए नहीं, महीना लगता है या दो महीने या छह महीने, आपका काम हो के मैं आपके घर कागज पहुंचा दूंगी। ये वकील साकिब शाह, ये इतनी मोहब्बत और चाहत रखने वाले, और मैंने भी चाहत मोहब्बत और एहतराम दिया है, और इसकी मेरे ख्याल में कॉल कट गई है। तो कोशिश ये न करें कि मेरा उस्ताद है, अगर मैंने मेहनत न की होती या आपने मेहनत न की होती तो फिर भी आप न बनते, अगर बाप सब वालदैन सपोर्ट न करते फिर भी तो आप वकील नहीं बन सकते थे ना। तो कोशिश करें डियर कि मोहब्बत चाहत से रहें और सदा गरीब दुखियारी लोगों का ख्याल रखें, इंशाल्लाह आप वो वकील बनेंगे कि जिसका कोई केस मतलब आप हारेंगे नहीं, क्योंकि जब दुआएं साथ होती हैं तो फिर जी अल्लाह दरसरा मल नबी रखमाना कलश्कर दरसरा भी यकतना है। अल्लाह दरसरा का गरीब और मोहताज लोगों की दुआएं लो, इंशाल्लाह कभी आप अल्लाह पाक आपको कमजोर और जाया नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी जी आप सुन रहे हैं मुझे?
1: निजाम मोहम्मद बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सवाबी खैबर पख्तूनख्वा से।
0: जी जी, पश्तो में बात करूँ या उर्दू में आपका आसानी होगी सर?
1: बस पश्तो में ठीक है।
0: अच्छा अच्छा जी, अजी सर तो मुझे प्रोग्राम शेयर कर लिया
1: डेरा मानना डेरा शुक्रिया जान या दुनिया लड़ाई मरना। निजाम मोहम्मद सबर कुमार साहब है ना?
0: जी जी जी।
1: रमजान खुला जी प्रोग्राम दुनिया जबरदस्त खुले मौजूम रहा उड़ेगा।
0: जी जी,
1: बिल्कुल हर चा बंद इतबार न दे पकार।
0: जी
1: इतबार के तुमरा मस्त न भी पकार रुस्तों पिस्तोमा नहीं बंदा और रुस्तों का नुकसान पेखेगी सर पूरे शहीद है।
0: जी जी जी,
1: जमा खुदा टॉपिक बने खबर जमा मशी इतबार के डियर मस्त न भी पकार चिजिया का
0: बिल्कुल
1: सही
0: था। बिल्कुल बिल्कुल छले खबर मोकड़ा एतबार यो हद पूरे पकार द
1: बिल्कुल
0: यार दो
1: नुकसान की ब्याह खबर हुई नुकसान दफी नो पकार खुदा मख के सोचो की हद नीवा ना नुकसान जो ब्याह हाय हाय ना पल सोचो फिक्र चमी
0: बल हाथ चान बल्कि रिश्तेदार बंदे बा यो हद पूरी इतबार के रिश्तेदार बंदे बा हद ची इतबार के
1: बिल्कुल
0: सही था। जका कहना चाहिए अक्सर नुकसान रिश्तेदार दर गई खपल सड़ा दर गई बिल्कुल यो जहान मनना निजाम सर बिल्कुल
1: अक्सर
0: चोर तारीख जिरके तारीख अख चे हमेशा वजीरान हो बादशाह तो नुकसान वरकड़ा दाचे कम खपल जान सरा वजीरान है वो
1: बिल्कुल
0: तारीख प्रोत टीपू सुल्तान जिरका टीपू सुल्तान जिरका चमीर सादिक और मीर जाफर धोखा वकड़ा पंग्रेजानो तलारे वरकड़े टीपू सुल्तान को बहादुर सड़े पर शहीद कड़े
1: बिल्कुल।
0: हालांकि वजारत वाला ओहदा चोर घटा ओहदा जो पूरा मुल्क वजीर है अब आग बावजूद दो लाला चुकड़े
1: बिल्कुल
0: जहान मराना खुशहालों से आबाद हो जी
1: ओके शुक्रिया
0: ओके जी अल्लाह हाफिज। हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ चाहते हैं डियर सामीन और डियर नाजरीन, बस आपके साथ आखिरी दो चांद बातें करेंगे और उसके बाद फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। मेरे ख्याल में वकील साकिब शाह ने एक और मैसेज किया कि सर जी मैं इस्लामाबाद में हूँ, तो कहा गया जब इस्लामाबाद में आए तो मुझे जरूर कॉल करें। अल्लाह पाक आसानी फरमाए डियर, अल्लाह पाक आपको खुश रखे आबाद रखे, मेरी चाहतें मोहब्बतें दुआएं और प्यार ढेर सारा आपके साथ है, इंशाल्लाह आप कभी नाकाम नहीं हो, क्योंकि हमेशा उस्ताद का जो एहतराम करते हैं, बड़ों का जो मानकर बड़ों की मानकर चलते हैं वो कभी नुकसान नहीं उठाते। जैसे डियर सामीन और डियर नाजरीन, मैं ना की बात की, मैं ना वफादार थी और कुर्बानी देने वाला किरदार था, और इसने जान पे खेल के मीठू को दोस्ती का ये यकीन दिलाया कि यहाँ तक कि अपने पंख और अपने पर भी तोड़ दिए। लेकिन मीठू क्या था, मीठू मतलब परस्त था, मौका शिनास था, और उसने जो मैना की मोहब्बत और कुर्बानी और इखलास था उसने मतलब अपनी नोक की मतलब पंजे की नोक पे रखा, جوتی نہیں پنجے کی نوک پہ رکھ کے ایک سائڈ پہ کر دیا, وہ جذبات میں آ گئی میں نا, اور جذبات کے فیصلے غلط ہوتے ہیں, جذبات کے فیصلے غلط ہوتے ہیں, غصے میں آ کے فیصلے غلط ہوتے ہیں, اور خوشی میں بھی فیصلے جو انسان کرتا ہے, خوش ہو کر وعدے جو کرتا ہے, وہ بھی اکثر ندامت کا باعث بنتے ہیں. آپ ہمیشہ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے کردار ہیں, ہمارے اڑوس پڑوس میں دیکھ لیں, قریب دیکھ لیں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں, احباب میں دیکھ لیں, جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں وہاں دیکھ لیں کہ وہاں پہ آپ کو مٹھو کے کردار بھی ملیں گے, مطلب پرست, خود غرض, اپنی نفع کی سوچنے والے, اور ایسے کردار بھی ملیں گے جو لوگوں کے لیے قربانی دیتے, لیکن قربانی کی ایک حد ہونی چاہیے, بھروسے کی بھی ایک حد ہونی چاہیے, ہاں جی دوستی کی بھی ایک حد ہونی چاہیے. آپ اعتبار کریں تو اس میں بھی ایک حد مقرر کریں, رشتہ داروں کے ساتھ رشتے نبھائیں لیکن اس میں بھی ایک حد مقرر ہو, یہی زندگی ہے. اور اسی زندگی میں اگر آپ حد مقرر کریں گے اور جتنا آپ اعتبار کریں گے اس حد تک اگر آپ کو نقصان دے, وہ if کہتے ہیں نا, if you lose something it is possible to find it, if you lose confidence you can't regain it, always keep in mind these two lines. ہمیشہ میری یہ نصیحت ہوگی, دنیا میں کوئی چیز بھی گم ہو جائے تو وہ مل جاتی ہے, لیکن اعتبار گم ہو جائے, اعتبار ٹوٹ جائے, تو چاہے جتنا بھی پاپل بیڑے, کتنے بھی بھروسے, کتنے بھی قسم قرآن, لیکن وہ رشتہ پھر بحال نہیں ہوتا, دل ٹوٹ جاتا ہے. اور دل کی تعریف اور کیا ہوگی, دل کی تعریف اور کیا ہوگی, ایک آئینہ جو ٹوٹ جاتا ہے. ڈیئر, ہمیشہ خوش رہیں اور یہ کردار سے بچیں. آخری چند الفاظ, بدلا جو وقت گہری رفاقت بدل گئی, بدلا جو وقت گہری رفاقت بدل گئی, سورج ڈھلا تو سائے کی صورت بدل گئی, ایک عمر تک میں اس کی ضرورت بنا رہا, ایک عمر تک میں اس کی ضرورت بنا رہا, پھر یوں ہوا کہ اس کی ضرورت بدل گئی. فی امان اللہ, حیات باقی, تملک.

वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

0: ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डांकियन नशीला, हमारे साथ रहिए, हमारे साथ रहिए।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जुकुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ
2: रहिएगा। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم।

ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमल 88.4 डांकी नशीला। हमारे साथ रहे।

0: मुताबिक उसका इलाज होगा।
1: ठीक है,
0: और
1: दवाखाना पर लाजमी आना पड़ेगा।
0: एक मरीज जब सामने होता है तो जाहिर है फिर मुकम्मल तफसील से बात हो जाती है, फिर उस पर बंदा उस टॉपिक को लेके या उस बात हाँ। उस मर्ज को लेकर और उससे डिस्कस करनी और उससे किसी हिस्ट्री लेनी,
1: ठीक है,
0: तो वो फिर ज्यादा बेहतर हो जाता है।
1: ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, की हाल है जी? कौन दे कितो गाल करेंदे पेवे? जी गुलमरजान भिरा, क्या पूछना चाहते वे हकीम साहब दे कोलो? इवें गाल जी, अज तक जेड़ा है ना पूरा प्रोग्राम मेरा लाला सिर दे दर ते कीते प्रोग्राम शुरू को सुनदे पेवे। इवें गाल है जी, इस दे मारे तुसा एक रेसो हकीम साहब बने तो को सारा सिर दे मसलन दे बारे दसा है, दर्द दे बारे, ते बेहतर ए है जो तुसा तशरीफ घिनण वाल शिफा दवाखाना ते। ठीक है, ये तो हकीम साहब को पता करे सो भाई वाल वदे होवे तो सिर को फर्क पोंदे के नहीं पोंदा, ते बिया इलाज वसे जी अल शिफा दवाखाना दा ना हमेशा याद रखे सो।
2: ठीक है,
1: हाँ ठीक है जी, रेडियो सुन दे रहा हूँ। बिल्कुल जनाब, जेरे मेरी बहन को जेरे मेरी भरा को कोई भी सेहत के हवाले दल मसला है पिया तो बिल्कुल अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नर्स ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी विच सांस से विच ही एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से मेरे भाई? खैर खरीद अबरू रास्ता छे आवाज डर कमर रवान जी सो कुल कम जी नरस रहे जी सच कम आवाज दखन अबरू रडियर कमर रवान जी जी। हकीम साहब, एक भाई पूछ रहे थे कि उनके सर में दर्द है, तो मैंने कहा तो हमारा पूरा शो ही सर दर्द के बारे में हुआ है, तो वो कह रहे थे हकीम साहब से ये पूछे कि बहुत ज्यादा बालों का सर पर होना क्या इसकी वजह से भी सर दर्द हो सकता है? उसने एक क्वेश्चन पूछा ये।
0: बिल्कुल, अगर बाल आपके तरफ से छोटे छोटी मिकदार में कटे हुए हैं
1: ऐसी बात
0: तो वो ज्यादा बेहतर है। अगर बाल आपके बड़े हुए हैं और वो एक कह लें कि तरतीब से नहीं
1: है, बात है हाँ।
0: खुशक है
1: हाँ।
0: तो फिर वो सर दर्द का बाइस बन सकते हैं।
1: बिल्कुल ऐसी बात है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो।
1: अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अच्छा, पट्टों में दर्द होता है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: आप
1: ठीक है, आप रेडियो सुनते रहे जी। हकीम साहब, उनकी घर वाली है और कमर में पट्टों में दर्द होता है, तो क्या मशवरा देंगे आप इन्हें?
0: मशवरा तो उन्हें यही है कि आप अगर आप असाबी कमजोरी के मरीज हैं
1: हाँ।
0: तो फिर इसका प्रॉपर तरीके से इलाज कराएं।
1: ठीक है,
0: और अगर आपको वैसे जिस्म में दर्दें हैं तब भी उसके लिए जरूरी है कि एक मरतबा दवाखाने पे आना पड़ेगा ताकि बेहतर तरीके से मर्ज का पता चल सके
1: ऐसी बात है हाँ।
0: और फिर उसके लिए इलाज तजवीज कर सके, लेकिन इतना इंशाल्लाह जरूर है कि उन्हें अफाका जरूर महसूस होगा और वो मुस्तकी तौर पर।
1: बिल्कुल ऐसी बात है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से मेरे भाई? शाहआलम से बात कर रहे हैं जी, क्या पूछना चाहेंगे हकीम साहब से आप? क्या पूछना चाहेंगे हकीम साहब से आप? हेलो जी, तो प्यारे भाई आपने मेरे ख्याल में जो है ना आवाज आपकी कट गई है। एक मैसेज है हकीम साहब के, अनस भाई की आपका शो लाइव है। बिल्कुल, हमारा शो लाइव है और रोजाना ही लाइव और बराह रास्त होता है। हकीम साहब, प्रोग्राम के आखिरी दो मिनट हैं
0: जी,
1: सो एक आखिरी कलर है, इनकी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
1: जी, कौन देख तू गाल करें दे पेवे? अच्छा, पश्तू ची खबर एक उरूर सो को लकम जी नरस रहे यजुना खबर एक हो जी चीरे सेहत हवाले सर मसवर्ष था मतलब चिस्सर डीर ज्यादा दर्द कवी दसे खबर रजी नन मो पूरा प्रोग्राम पदी बंदे वखड़ल सर दर्द मंदे और बेहतर अदा दस्ता सो कम कुरवाल अदा दस्ता सो रावड़ी टांग छे अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट तारावड़ी सही देखे नजी।
2: अच्छा,
1: इंशाल्लाह दी इलाज बबूशी। सो बिल्कुल हकीम साहब, शो का टाइम खत्म होने वाला है, सो आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप अपने सुनने वालों को?
0: पैगाम یہی ہے کہ آپ اپنا اپنے آپ سے زیادہ خیال رکھیں,
1: ایسی بات ہے,
0: اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں.
1: ٹھیک ہے حکیم صاحب, یہ بتائیے گا کہ کل انشاءاللہ آپ موجود ہوں گے
0: انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو صبح 8 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک میں مطب پہ موجود ہوں گا.
1: ایسی بات ہے,
0: اور ظاہر بات ہے جس نے ملنے مشورہ کرنے
1: بالکل ایسی بات ہے. آپ کو جو بھی مسئلہ ہے خواتین و حضرات, آپ بالکل آ سکتے ہیں, حکیم صاحب سے رابطہ کریں, اور انشاءاللہ حکیم صاحب روزانہ موجود ہوتے ہیں اپنے کلینک پر, اور اپنا علاج معائنہ جو ہے نا وہ کرواتے آپ کروا سکتے ہیں. چاہے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نلس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں. سو حکیم صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے, بہت مہربانی آپ تشریف لائے ہمارے سامنے, ان کے سوالوں کے جواب دیا آپ نے,
0: بہت بہت شکریہ,
1: مہربانی, اللہ حافظ, اللہ خوش رکھے آپ کو ہمیشہ. بالکل خواتین و حضرات, حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی آج آپ نے گفتگو سماعت فرمائی, اور امید ہے کہ آج کی گفتگو آپ کے لیے بڑی ہی مثبت ثابت ہوگی, آپ اس سے بڑا فائدہ لیں گے. سو خواتین و حضرات, یہ شو آپ کی خدمت میں جو کہ صحت کا پیغام ہے, الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے پیش کیا گیا اور روزانہ پیش کیا جاتا ہے 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک. تو انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے, اور مریضوں کا چیک اپ آنا جاری رہے گا. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور پروگرام کے بعد حکیم صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے, زندگی باقی تو ملاقات باقی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اللہ حافظ, اللہ نگہبان, اینڈ السلام علیکم.

अचानक कहीं से इशारा हुआ था, अचानक कहीं से इशारा हुआ था, वो अगर ना मुखालिफ तो हारा हुआ था। मेरी बेबसी ने तसल्ली से देखा, जो किस्मत में था खेल सारा हुआ था। मेरा वक्त बिगड़ा तो वो मुझ पे बिगड़ा, कि शरबत का लहजा भी खारा हुआ था। सितम है कि अब वो किसी और का है, कि जो सबसे पहले हमारा हुआ था। मुझे दुख है अनवर तो इस बात का है, मुनाफिक कोई दिल को प्यारा हुआ था। निगाह उनकी मजाज थी, ओ निगाह उनकी मजाज थी, कभी उठ गई कभी झुक गई, तो रईस हमसे यही हुआ, कभी जी उठे कभी मर गए। वो जो रास्तों पे बिखर गए, वही मंजिलों पे सवर गए, जिन्हें जिंदगी ने रुला दिया, होते हंसते हंसते ही मर गए। वो गए जमाने का इश्क था, वो गए जमाने का हिजर था, कभी आप दिल में पजीरते कभी आप दिल से उतर गए, और सुरूर कैफ भी छिन गया, वो मताए जान भी लुट गई, उस सुकून दिल का चला गया, सभी दर्द दिल में ठहर गए, और उसी एक पल में गुजार दी, शब वसल भी शब हिजर भी। वो जो एक पल के लिए कभी मेरे पास आके गुजर गए, तो रईस हमसे यही हुआ, कभी जी उठे कभी मर गए।

0: मोहब्बत करके भूल गया तो क्या हुआ, लोग हाथों से दफना के भूल जाते हैं कि कब्र कौन सी है।
1: साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई।
0: ये दिल जब टूट जाए तो फलक भी कांप उठते हैं, मोहब्बत रूठ जाए तो वबाएं फैल जाती हैं। ये दिल जब टूट जाए तो फलक भी कांप उठते हैं, मोहब्बत रूठ जाए तो वबाएं फैल जाती है। तू देख लो जाना, तुम्हारे शहर में आज जंगलों का सकूत है, तुम्हें नाश्ता जिस पर वो मोहब्बत भी मशरूत है। तुम्हारा हुस्न बस एक सैराब है, और क्या दिलकश क्या बदसूरत, हर चेहरे पर निकाब है, हर शख्स बाहिजाब है।